0: भरे खन प्रलो छैन हतर लैन हो याजु मेवने व छिजी तारे मुई पिब मिमेमी मार्बलरी त्रिवबीर बेसिसर मुबा गंगा आर्ट ग्यालरी याब मैब आछु
1: नै याम भीर तयार तडीमा तारे नासर बजार लम्बी मु मेडल कप ट्रफी प्रमाण पत्र ब्यानर को बनेल पर्दी भीर याब मैलो खारे तारे प्रे यान सेदी
0: स गंगा आर्ट ग्यालरी तोतो बनेर आछु
1: तर नि मार्बलर फ्रीवा साइन बोर्ड होर्डिङ बोर्ड लाइट बोर्ड जम्मै बनिम्रो फोटो प्रिन्ट टी सर्ट प्रिन्ट स्टिकर गर्दिम लम्रो छालसी ब्याज दे माया चिनो भनेम्रो
0: पहिले भनेको मैले सबै बुझ्यो कान्छा अब म आछु
1: नै याम भीर तयार तडीमा तारे नासर बजार लम्बी मु मेडल कप ट्रफी प्रमाण पत्र ब्यानर को बनेल पर्दी भीर याब मैले

प्रिय श्रोता, अब प्रसारण हुँदैछ TWR नेपाल स्तुति कार्यक्रम जागृति। कार्यक्रम सुनेर आशीषित हुनुहोस्।